तक सल्तनत उस्मानिया की हुक्मरानी में रहा। यह शहर जो 1392 में उस्मानी सरजमीन में शामिल हुआ, सिर्फ एक इंतजामी मरकज बनने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि फन तामीर से लेकर अदब तक, मसबी जिंदगी से लेकर रोजमर्रा जिंदगी तक हर शोबे में तुर्क सकाफत के रोशन तरीन नुमाइंदों में से एक बन गया। स्कोपिया पहली जंग कोसोवो से फौरन बाद यिल्दिरिम बायजीद के दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया में शामिल हुआ। ये फतेह पाशा यजीद बे ने हासिल की, जो सारूहान तुर्कमानों में से थे और ख़ास फौजी महारत के हामिल थे। अगरचे उस्मानी आर्काइव्स में शहर की फतेह की कोई हतमी तारीख नहीं दी गई, लेकिन स्कोपिया के गाँव वोडनो में वाक़ और 13वीं सदी में तामीर की गई सेंट थियोडोर खानका से मिलने वाली एक मजहबी किताब में फतेह स्कोपिया की तारीख 6 जनवरी 1392 रकम है। सल्तनत उस्मानिया में दाखिल होने के बाद स्कोपिया उस्मानी हुक्मरानों के लिए बालकान की तरफ खुलने वाला एक अहम दरवाज़ा बन गया। अपने स्ट्रेटजिक अहमियत की बदौलत मुख्तसर वक्त में शहर ने हैरानकुन तरक्की कर ली। शहर में उस्मानी शहजादों की तायुनाती की वजह से 15वीं सदी के बाद से स्कोपिया को शहजादों का शहर कहकर पुकारा जाने लगा। उस्मानी दौरे हुकूमत में इंतजामी एतबार से भी स्कोपिया नहायत अहम मरकज की हैसियत रखता था और रोमीली नवाबी के सर फहरिस्त शहरों में से एक था। 1519 की मुसन्नफा किताबों के मुताबिक शहर में तकरीबन 2000 मकानात थे और इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुसलमान तुर्कों पर मुश्तमिल था। 16वीं सदी में खास तौर पर अनातोलिया से नकल मकानी करने वाले तुर्क खानदानों की आबादी के साथ शहर की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ और स्कोपिया ने अपने तामीराती, सकाफती और माशरती ढांचे के साथ उस्मानी तुर्क शहर की शनाख्त हासिल कर ली। उस्मानी फन तामीर की हामिल यादगारें जो सदियों से स्कोपिया

सामिन, आप हमें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से समाप्त फरमा रहे थे। इसके साथ ही हमारी आज की नशरियात का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारा पता नोट फरमा लीजिए। इंचार्ज उर्दू प्रोग्राम, वॉइस ऑफ तुर्की, पोस्ट बक्स नंबर 333, पोस्ट कोड नंबर 06443, यानी शहर अंकरा, तुर्की। हमारा ईमेल एड्रेस है urdu@trt.net.tr और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.rturdu.com। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।